0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche, City FM, Studio Time.
2: It's 6 PM.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: यो बा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दूतकोशी को समृद्धि मध्य दूतकोशी गांवपालिका सोलकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार सांज 7:30 देखि 8 बजे समय सूर्य एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन सूर्य एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: हेलो दाई नमस्कार।
2: नमस्कार भाई कता छौ?
1: म त गाउँमै छु नि दाई, एसी परीक्षा सकेर बसेको। साथीभाइ सबैले काठमाडौँ गएर कलेज छानिसके, कहाँ पढ्ने के पढ्ने, म त अमाउमा परे दाई।
2: अमाउमा पर्ने कुरै छैन भाइ, तिमीसँग एसी दिनेका साथीभाइ चाबहरूको मनसु कलेजमा

0: इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज में विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते
1: आये
0: न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुचीवादी संपर्क नंबर 9813623 82 9813623 87।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल
2: कलर तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतु नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: गुनाको कारण उपभोक्ता थोक विभाग स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गराउने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
1: सधैँभरि रोजे।

0: आज सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चुकमा
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
3: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस टाली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी डिजाइन
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98482030

जीव मान्यता सबके विशेषज्ञ आजकल आत्मता यूनिटी कार्पेट को विगत 3 दशक देखि को सुविधा यूनिटी कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यूनिटी को लोगों ने ना बिस्मिल्लाह यूनिटी कार्पेट कार्पेट को शीर्षा

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उत्सव प्रविधि।

शून्य उन्तीस पांच बीस शून्य शून्य फोन वास्तव एफएम न्यूज एट द रेट जीमेल डट कम ईमेल कर सकू तीनभर जानकारी हम समाचार में समेटने प्रयास कर हालचाल सको सांझ सात बजे फिर सूचना शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का नमस्कार।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चित्रमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा।
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842803000।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम 6 पीएम

0: close to your heart.
1: Zulu FM 101.2 MHz.
2: TWR Nepal Nesu Jo Margadarshan Radio La Prasthitile Jai Masi. Tayang Ti Niji Kyung Mogoi Dakti Shin Kyung Tang Dukti Parla Sang Niji Ki Tiang Duk Liamu Keni Dini Liamu Keni Dwabin.
3: Kasihkan kami demikian. Nusa ringa puru di jekhmace. Dati berari kunci kesunglam. Dati walalai di zamanin lam. Waktu dasar tinjulah dini bayang. Kami tujuh kahjukan namsa matungau. Nemuain. Kami tujuh sahaja lim lumutamin. Kami dasar cek syaraki. Lakbakang buji tetok kua. Jengah dap sojiwe. Kami injin syaraki. Namjata nusa tama. Syaraki upang tinduk. Aku sojiwe. Kami syarikin namsa kahjukan sojiwe. Dakuti gula farsu cangwajinni. Kalau itu mazuni, jaga cewitnya na samlam, meriang jiwi, ngadu juga setam silam, khakasini jemno, kamu hutran dikhati, kasini jebuk topki, jelas silubanya biasa tamam, lima toksi dua thadung gosong, bayi bayi tinjing baje, yesai ki thibla khaji tola tinjuai, jadi jemu tu sahaja je, lemu sitanin, jisitan de, yesai si je, cakjane yuncur kulanya jiwi, ngayesai khajin narsai, lebuk cangwai. Tayang shop, daku mulana dini, daku tamji korlam, ara ora tamjiro. Kira ki dikwata senici ye muru usna, kiti khadawa kormu ditong. Kasini muru usna, kiti lukki paloga ditong. Nung jurung semla gulne, tam nyindub gasun susin. Kira ki didasaji lemu, lemu sab samadanya kiwi. Nung kira maayi sun susin, sinona tiki chenin terkiwi. Silasin cuy konjokki, kita sudah ditamsun namuhin. Ya saya ji dungalati nyimalam, senbulau mnino. Israel ji terungsang, alatili kimuduno. Ya bungi mulam diwano, rungsang tiwam, nyema lumba-lumba ji, ngartiwi tuni yukub ji, lakati kiturno. Putra ni jublam, diwi loni dawani, Yerusalem tamah Yahudi ji, kongba tiwa tojiwi. Tamah Israel ji hoki jibam, citama tiwalam, ibu saya di nangkajuhi ciklam, asuri tiwa wani kuala kir jam. Mau jebul jumla, sama tujuh minta torno. Esai ki sejam tu ditam, jokta ki cai nortua in. Esai ki mitua lam, niaki cai in si jumla, katani wen. Ibu duga dingin wen, ya tujuh konjol lam, bangwasi junang wen. Koi ki tiwala cuk jani, sumin wasi utam lam, lema jani nina. Saya show dah bungulan dini, dah bukara tamla aru ura kiro. Niaki mangsa jeb, cahala tiwatan, melakwa cahala tu tindu, niti mula tam kiro lam, so kitu buasi ni, na samtang ni wen. Kiki ki mutube, kiki mula kansang, tuka pirma cahala mengwe. Kiki na samji lema jani, laka kinan cahau mengwe. Tukene dalbuji laklam, niki tenaji sitang lam, manglakwa cahau untuk jwe. Injil keraji lam, ditamlah aku ni, sindati untuk jwe. Keraji lalaji mula, jauh senji dingi tam, tam kiriwa soli unju. Tama keraji tiwa lam, niki kura zuhu kala tiwa, sabla dada kiri unu unju. Nungsan dikbiji kirung lam, ditamlah ni selakwa, zuhani jang jwe. Jadi kunci kecengen nasun ji, cokelah aku senang, minci jauh tamin. Tama tu kini coba lah, dabu korang ngar tama, dabu korang ini kisuh tam jiwe. Dakwi mula utang, dikpala jauh sebo, tama korang dikpana sur, waktu mu dilamnya jiwe. Dakpula sama jauh lah, nungsa lemu jauh lah, dabu korang ini cawu insur tam lah, kitubla digi laga jiwe. Tama dakwi ji kunci ji, siapa tama tamji sosis ni, dikecengen tuji ngar ningjiwe. Kamu lawan jalan lah. Kata orang, kau ini sunnah orang ini, kalau mula cuci orang ini, cuci kau ini jauh, minyaknya sih tuh jiwe. Ini sih kau ini, sehingga tuh minyaknya ni, sama ti juga nado tuh jiwe. Sama minyak ti jiwe, rumah sih bermuzo ni, kau ini sih minyak tuh jiwe. Sama ti lagi yang tuh jiwe, sama minyaknya tuh jiwe, sama ke malam minyak tuh jiwe. सुनना चाहिए जी दुगे पर जी थोड़े योगो लाका इन जी आरिये सब बोले निदबते रे काम जी थोड़ा इन कौन जगी चुरूंगा दुक्सी कतर ना होए तयाशोक दागु मुलाना देने दागु तामला आरो उरे चिरो तमा चेतो तमा जैसे कहाँ होए सिनी दागु ना संतोंगो खेले मुला रखते मेरे जीना होए दागु ला थल जीतो यीशु क्रिस्ट ही खेला थोला भिन्ना होए कोई खेला जी थोला भिन्ने वो रखते मेरे जी थोला जीना होए जीवी खेला जैसे निगुर ताम इंजे खेले जी खेला दिखपते वा क्याओ इंजनी सी भोजे जे निशे खेला जी मतकबा क्याओ इंजनी सी भोजे चुरुंग कौनसा जाए उंगो जीवे, चुरुंग ठीक है इंसनी इंसी तुम बोजीवे, तमाती जो चाहिए कौनसा के, कोई जीने बोटिंग है तुम्हारा, तमाशा वाला, चराजी दिख बीजी शावा, कोई जी चाना गोवे, जिदी कौनसा के लाने नगोवे, कोई जी चुरुंग ने सिखाओ ताम दे, जना वो तो ताम है, जिसे थोड़ा कोई जी ताम ची नगोवे, जिसे तैसरा जाने चराजी समझो कुला कम चराजी थोड़ा छपनी तो दबाव है निन्ने उतना निन लोग चले ये कौन सा मुला कोई ये सुमला लासुंग सिंह जिसे चोले हम जीजू कोई की चोलना यीशु क्रिस्ट ऐसे शाह बिन्ना हुए जो बोला ना ऐसे की नार्चत चला जितर समय समझे बिन्नार की दुष्णी सी जावे क्यों जी सेंदिल सिनां मरुचो वसिनां जिसे खादवा कर मुझीता नचेंगे खाजी को लन्ना संतोंगिन तमाजे थलमला पबु पड़ला सासे कर मुदमल ले मुथंगुवे जिला मीकिन ना बबुने जानी सातोंगो पड़ला जिसे कोले कोले जानी में तंगा जीवे इनने यीशु क्रिस्ट कुछला फिपना सुन दागबीजी दिगबीजी ला जैसे तुबला दागबीजी सेंदिल सिनां मरुचो दिखवाती थोकला कुछला कोई की था कोई की दागबु सलाना ना सुन दागबीजी दिगबीजी मंदिर की थोकला यीशु क्रिस्ट की खोंगला छेदर छेदुला भिन्ना सुन कौनसे पब्बी की दूर तमा ये दूर ला चबी जोबला कोई की नीता दागबु थोला जाना सुन इमी थोंगनादे कहाँ इंसिजन दागबु लेमा जानी फायना यीशु की चंगला भिन्ना हुए जिसे भक्ति मन्ने से दागबु दे कुन्ने वा नमुविन जे कौनसे के छोआ ने सुन दागबु दे कुन्ने वा विन जी दागबु की दिखबी की शावा इंसिजन की लागन ने सुन दागबु दे कुन्ने वा हुए तमा दिखबी की गोंगे की रोसा मन्ने की सिने तमा दागबु की सितुब की वे कौनसे के दागबु दिखपला माला नी दागबला मन्ने थेंदुर तमा मतवा मार ने जे नंगुवे रोसा यीशु क्रिस्ट ला दागबु क्या मौजी की सनिसिन दागबु चंगे इंसिवे खादवे कर्म तमा कोई की फैनी तुम नो जीवे सोई कौन सा ऐसा है जी निमाजी रिश्मा सुनने ना सुन लोंसंग चला इंसिनी तमा खला इंसिन सिसिन चला दिलों में ले मिले मचालक दिवा साबला ने जी दों लों चला जी मिंसिन जासन सिसिन तमा खोपा जासन सिसिन तमा चला ला जीजी चेकी दों जेता लुम्बा लुम्बा दिवा ला नीतो वाला सासे ले मोए ढटाएं दीपजी जमुलेंगे नीतो वाला छुट्टो बोल सोली नोए तमा दागुला नातो बोल सोली नोए दागु चंगु जी को जुए दागु ती जैसे कुदु देखो जुए तमा दागु करूंगा जुगी ना समझा दिखबो तो जुगी ना समझा दुमिजो नागते हो जी बोजुए तमा दीपजी दिखी शोकला तमु जगरा बोजुए लुम्बीजी ऋषिंगी दागुला मला मेजरवे इके दागुला यीशु ख्रिस्त की दैत्य ने मुंडवे जितान दे चंगुइन तमा जी जमुलिंग ला चुरों चेने वसना जितान दे उतना चंगुइन तू क्या ने दिग्विजय नाची तमा जमुलिंग ला करे मुझी छोकला तमा लोग बुला दागुजे क्रिश्चियन तमा चिरा नासम होतो नितुआ मुआजिमा जाई होतो निति मुला सोगनी देखो जीवे तमा चो पला चो कंजो नीची पला फिर तमा तमन दागवी ताम दिवा आरा उरा सिलुप्सनी सीजा ताम लन्ना संतों जय जोतो उच्चाला ही होए तमो कोई की दिशनां थकवा सुमनां चुकियों की दागबतरे की मुला दिखनी कोई की नासना निन्ने कोई की भिन्नगु दागबी ये चिदांगे चिमला निन्ने जेतुबला तमा तमा चले निन्ने जेचिरुबला तमा निन्नुब की थोकला दागबु खड़े की निजी की थोकला ना संतोंगु देगी कीसा लेंशिन दागबी ये मुलाम थोपजुवे जैसु के निशिकां भिन्नवाई चुराजी दिलमुजी ले मन्या मताम दिवा सिसु बोजी दो ज्ञान ताम कौन जोगे तेनी जान नंगी दो नुमु निन्नु तमा कोई जी शाव निन्थु वो नीतेवी जी थोकला खोला ज्ञान ताम नो निन्नंगी यीशु क्रिस्ता खो खड़ा थोकला जिदी क्या नंगु नो नंगी खो खड़ा जी थोला जुग थमला ले मो तमा शेप ने से डालो तमा देवा चलना कौन जोगी मुला नीचे मुला मो पर जीवे दो खड़ा कोई जी थोकला नो निन्नंगी तमा होतना जानी जिगे खड़ा जी दीपो जाओ इसी सी जा भिन्न आए जिगे खुरुंगा खड़ा मुला जुम्मे ओ तो मतपा तमा क्यों को लगने से कुदो दे तुम ना सम ये तो जीवे तमा नेमा जानी निना नेमा चूती कहाँ इंसी सिन नों खेले की तुम माचे सुन सिन जिगे खुरुंगा चुर तुम दाओ खुरुंगी सिख परा में सुर फ्रॉम मुझे विजय नों खेले की कोई जगे ना सम tama tamjila nyini khola mo cha su si sin khera ji sa se de mo sin do sa thuk ki do tama chun tiki tha ka la chulo ma si su si sin chulo khera da ne su khela ji tama na tum do tama ji tam ji tu sa kyang bu na wa tu ge na ang ji sun ji chung la ni ji tama khang bu ji ye la mi sin do mu tu re tama ni ji ni mang la do ga ya ni ka tam wen ja bu me ku tu mi tu wa tama ni mang te wa tiki a ri su ni ngin ji dakwe le nyam la na ri chikwara ji we tama ji cho kon jo ji yesige kola da bukhara ji dhola jane sa nidu tama ji udaram kon jo ji sungi khara tha ki bani wa koi ji khara sungi dakwe dikpatan ki en jo khuchi da tama dakwe dikbi mandi yesu khrish ki kushla kuni ji shiru tam ji shidang kon jo ji kinina no ya yesu ni ye ji jao in jine sung na sung dakwe ji dikbi ki thokla shula jay na sung tama tiju la so pala kho shem na su dhoga jane nungusendu la nang ni nani na sung tama koi ji dakpula koi ji payanla tama chenge lung ni bin na sung nala iwa ji choy ji dhoga jipu shidang nyen ni wai nala iwa ji ji shidang la sem la ningi win tama dakwa choy kwanja yesu la ninge jan nang win shira shi kwanja ki tirang dakwi dikpatan ki inti wang cheke le amun suwa nang win koi ji dhira dakwi sinir dhoga moru dikpati wang nani pa dhoga skarnu zobla tama kha dhoga karnu suwa nang win nga yi shukin ji sharaji di kya katang uong ye tuk jivin tama sharaji sharai dikbiki la jachol ni sharaji choyi kwanjola tamri jan nang win sisi tama shara dhagu mula dini dhagwi tama aru uro shuru mula sharai dikpatang jindua nang tama tama tila karmu tama chenge yesu dhoga chenge zun nang win dhase ariye sungi dhudara ino dhagu longsan dhura jani meri thetutno tere la tehi dhure tama tuyeche otao.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Surya FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सामाजिक रूपांतरण का लागी यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CNN।
1: अहिले बेलुकी को 7:30 बजे को सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: 小孩的妈，才有话就你说路 FM 说的
1: Solu FM 101.2 MHz. Ujjwal Bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sangam Chet. Solu FM. Studio time.
3: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंभू.

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चौकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852988002222 98482000।